कोई उनसे को दे देते हैं यह नमस्कार चकुनो जेदो दागनो चाहिए जी उच्च मकान के जी खुई इनसे चकुनो बारबेक्यू कम्युनिटी बारबेक्यू चपाया उच्च क्या अगुनो जी सही है वो डॉक्टर जन दे देते हैं कॉम्प्लेक्स जिम है गुन दे जी तो दो वंच उसको देख जी स्क्वाब बच्चीना नो चाहिए न्यून मीना पितू इस पीछे अगुन ताई जे तक चाहिए community barbecue ayagno yo de this we minji ko sig wood dog sige ge mini carnival spayagno ge ekno a mio dagno sige so say ye ji etip smo mak sige we minji okay so sige dot sibie ji sige pama che yo de bajman win smaj mary jolly sir mark stewart yo ji ni job at shimagan charles loaded cyril wapachi bana blacksmith gimag alex leclerc Gemma gai a gwe winsig neu i sbwysau mynd gbeth den o i winsgag. Wadjeg am swe, ni beth sy'n long chap.